नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब, जय माता दी। श्रोताओं, आपने ट्यून किया है आकाशवाणी एडलेट को 103.1 एफएम पर भारतीय प्रसारण के हिंदी कार्यक्रम को, मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पाएंगे www.5bbi.com.au पर। तारीख है 30 सितंबर 2026। समय हो रहा है 7:30 और बार है बुधवार। हिंदी गीतों के साथ साथ हम हाजिर हैं कुछ रोचक जानकारियों के साथ। और कार्यक्रम में आगे बढ़ने से पहले सुनते हैं मीरा का ये प्यारा सा भजन।

0: श्रोता, आज मेरे साथ जुड़ रही हैं हमारी एक सहयोगी मोनल जी। मोनल जी आपको वैदिक साहित्य के बारे में कुछ जानकारी दे रही हैं इस कार्यक्रम में, तो सुनते हैं मोनल जी को।
1: नमस्कार, मेरा नाम है मोनल और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ वैदिक साहित्य के बारे में कुछ जानकारी। सनातन धर्म का वैदिक साहित्य बहुत ही विशाल है। वो हमारे ज्ञान का वह स्रोत है जो हजारों सालों से हमें मार्गदर्शित करते आ रहा है। अगर हम वैदिक साहित्य को समझना चाहे तो उसे मुख्य रूप से दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। एक है श्रुति और एक है स्मृति। जैसे कि ये नाम सजेस्ट कर रहे हैं, श्रुति वो है जिसे हमारे ऋषि मुनियों ने अपनी तपस्या और ध्यान के द्वारा सुना या उन्हें वो प्राप्त हुआ, और इसमें समाविष्ट होता है वेदों का।

वैदिक साहित्य का दूसरा भाग है स्मृति। स्मृति वो है जो वेदों से ऋषि मुनियों ने ज्ञान प्राप्त किया और उसे याद रखकर लिखा और उसे पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ाया। इसका संग्रह स्मृति में मिलता है। चलिए आगे हम इसे थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। श्रुति, जिसके अंदर वेदों का समावेश है, मुख्य रूप से चार वेद हैं। सबसे पहला है ऋग्वेद, वह सबसे प्राचीन वेद है और इसमें हमें देवताओं की प्रार्थना, स्तुति, स्तोत्र जो भी हम आज गाते हैं वो सारे ऋग्वेद से आते हैं। दूसरा है यजुर्वेद, इसमें हमें यज्ञ और अनुष्ठान की विधि पता चलती है और ये हमें कर्म और कर्तव्य का महत्व सिखाता है। तीसरा है सामवेद, सामवेद को भारतीय संगीत का आधार माना जाता है। इसमें मंत्र को स्वर और गान के रूप में प्रस्तुत करने की विधि बताई गई है। उसका संगीत का पूरा ज्ञान जो है वो सामवेद से आता है। चौथा वेद है अथर्ववेद, ये वेद बहुत ही लास्ट में जोड़ा गया, मतलब थोड़े समय के बाद, बट इसका चारों वेदों में समावेश है। इसमें हमें लोक जीवन जीने की, औषधि के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में और शांति के बारे में मंत्र मिलते हैं। सरल तरीके से कहे तो ऋग्वेद है प्रार्थना, यजुर्वेद है जो कर्म सिखाता है, सामवेद है संगीत और अथर्ववेद है स्वास्थ्य और लोक जीवन के। अगर आगे इसे जानने का प्रयास करें तो वेदों का स्ट्रक्चर हम समझ सकते हैं। हर एक वेद आगे चार भागों में विभाजित है। पहला है संहिता, उसका मतलब है मंत्र या सूक्त या स्तोत्र का संग्रह। दूसरा भाग है ब्राह्मण, इसमें यज्ञ और अनुष्ठान की व्याख्या है। तीसरा है आरण्यक, जिसमें ध्यान और दर्शन की शिक्षा दी गई है। चौथा भाग है उपनिषद, उपनिषद को हम वेदांत भी कहते हैं, यानी कि वेदों का सार। उपनिषद में हमें आत्मा और ब्रह्म ज्ञान और मोक्ष का मार्ग मिलता है। यह हमें अध्यात्म के बारे में और स्पिरिचुअल जीवन के बारे में समझाता है।

0: श्रोता, आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडलेट को 103.1 एफएम भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस के साथ। मोनल जी की जानकारी जारी है।
1: अब हम स्मृति साहित्य के बारे में जानते हैं। स्मृति ग्रंथ वेदों का व्यवहारिक रूप है। अगर हम इसे सामान्य भाषा में समझने का प्रयास करें तो अगर वेद वो थियोरिटिकल स्टडी है तो स्मृति साहित्य उसका प्रैक्टिकल रूप है। इसके मुख्य तीन प्रकार है। पहला है महाकाव्य, जिसमें से जीवन और धर्म के आदर्श का मार्गदर्शन मिलता है, जिसमें मेन है रामायण और महाभारत। दूसरा भाग है धर्म शास्त्र, समाज और आचार के नियमों का संग्रह, और इसके उदाहरण में हम ले सकते हैं जैसे मनुस्मृति। तीसरा भाग है पुराण, पुराणों में समावेश होता है देवताओं के अवतारों की कथाएं। जैसे हम जानते हैं टोटल 18 महापुराण है, विष्णु पुराण, भागवत पुराण, शिव पुराण, मार्कंडेय पुराण, भविष्य पुराण, नारद पुराण, गरुड़ पुराण, अग्नि पुराण, ब्रह्मा पुराण, लिंग पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, वामन पुराण, मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, नाग पुराण, वायु विष्णु पुराण। इससे आगे 18 उपपुराण भी है जो ये महापुराणों का संक्षिप्त रूप है। स्मृति ग्रंथ जो कि महाकाव्य, धर्मशास्त्र और पुराणों का संग्रह है, ये हमें जीवन में धर्म, कर्तव्य और नैतिकता का पालन कैसे करें इसके बारे में मार्गदर्शन देते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आगे मैं सनातन धर्म के बारे में और भी जानकारियां लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत होंगी। धन्यवाद।

ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडलेट पर 103.1 एफएम भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर। कहीं जाइएगा नहीं, आपके पेश से खिदमत है एक हिंदी गीत और मिलते हैं इस गीत के बाद।

0: ये कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी एडलेट पर 103.1 FM भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्क के साथ। मैं बात कर रहा हूँ एडलेट में होने वाले भारतीय त्योहारों की। भारतीय त्योहारों में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी एडलेट शो ग्राउंड पर हिंदू काउंसिल ऑफ ऑस्ट्रेलिया का सौतुष्टले चैप्टर इस बार दिवाली का मंचन पुनः करने जा रहा है 7 नवंबर को, जिस कार्यक्रम में सदैव की भांति रामायण का मंचन, जिसमें लगभग 40 प्रतिभागी अपने इस कार्यक्रम में भागीदार बनेंगे और सदैव की तरह रावण दहन होने जा रहा है। इस कार्यक्रम में आपको यदि शिरकत करनी है तो आपको टिकट भी लेनी पड़ेगी, जो टिकट ऑनलाइन उपलब्ध है $15 में, और अगर आप गेट पर लेंगे तो $25 में ये टिकट आपको मिलने वाली है। तो अपनी टिकट बुक करना ना भूलिए। 7 नवंबर को सुबह 10 बजे से ये कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। इसी कड़ी में एक और कम्युनिटी अनाउंसमेंट, जो स्वामी नारायण टेम्पल बैप्स माउंट गैम्बियर इस वर्ष खुलने जा रहा है। इस सप्ताह के अंत में वहां पर मूर्ति का प्राण प्रतिष्ठा होगी और एक बड़ी रथ यात्रा भी माउंट गैम्बियर शहर में निकलने वाली है। तो आप इस कार्यक्रम में भी शिरकत लेना ना भूलिए। उनके कार्यकारी सदस्य पूर्ण जानकारी दे रहे हैं अपने इस संदेश में।
1: नमस्कार, माउंट गैम्बियर और पूरे लाइमस्टोन कोस्ट के प्यारे श्रोताओं को जय श्री स्वामी नारायण। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद शुभ ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घोषणा। इस सप्ताह आपके शहर में BAPS श्री स्वामीनारायण संस्था द्वारा भव्य मंदिर का लोकार्पण और मूर्ति प्रतिष्ठा महोत्सव होने जा रहा है। जी हाँ, एक नया हिंदू मंदिर, एक नया आध्यात्मिक केंद्र और एक नई सांस्कृतिक पहचान। भगवान स्वामीनारायण, प्रमुख स्वामी महाराज और महंत स्वामी महाराज के पावन आशीर्वाद से BAPS स्वामीनारायण संस्था अब माउंट गैम्बियर में भी शांति, संस्कार और सद्भाव का सुंदर दीप प्रज्वल करने जा रही है। इस महोत्सव में पधारेंगे पूज्य परम चिंतन स्वामी एवं संत मंडल, जिनकी पावन उपस्थिति से पूरा वातावरण दिव्यता से भर उठेगा। अब सुनिए कार्यक्रमों की तिथियां और समय। शनिवार 3 अक्टूबर 2026 शुरू होगी एक भव्य नगर यात्रा। बराबर दोपहर 3:30 बजे हम सबको एकत्रित होना है अम्फरस्टन सिंकहोल जुबिली हाईवे। शाम को सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं कीर्तन आराधना का भी हमें लाभ प्राप्त होगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम और कीर्तन आराधना का समय है शाम को 8 बजे। इससे पूर्व 6:30 से 7:30 के दौरान हम महाप्रसाद का भी लाभ प्राप्त करेंगे। इसका स्थल है वुलुंडा रिक्रिएशन एंड कन्वेंशन सेंटर माउंट गैम्बियर। रविवार 4 अक्टूबर 2026, हाँ, अगली सुबह सबसे पवित्र क्षण मूर्ति प्रतिष्ठा महापूजा विधि। सुबह 8:30 बजे यह महापूजा विधि का प्रारंभ होगा और 10:15 बजे तक यह विधि संपन्न होगी। हम सभी को इस महापूजा विधि का लाभ प्राप्त करना है वुलुंडा रिक्रिएशन एंड कन्वेंशन सेंटर से। इस महापूजा विधि के बाद प्रारंभ होगी एक प्रेरणादायी सभा, जिसका समय है सुबह 10:30 बजे। उसके बाद महाप्रसाद और उसके बाद समापन। तो माउंट गैम्बियर तैयार हो जाइए। पहली बार आपके शहर में एक ऐसा मंदिर खुलने जा रहा है जो आने वाली पीढ़ियों के लिए आध्यात्मिकता, संस्कृति और एकता का सुंदर प्रतीक बनेगा। यह मंदिर का एड्रेस है 7 Ralston Road, माउंट गैम्बियर, साउथ ऑस्ट्रेलिया 5290। अपने परिवारों के साथ आइए, इस ऐतिहासिक और पवित्र अवसर का हिस्सा बनिए। धन्यवाद। जय श्री स्वामीनारायण।

103.1 FM पर भारतीय प्रसारण का ये हिंदी कार्यक्रम आप सुन रहे हैं मेरे यानी विनोद बिस्ट के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bvi.com.au पर।

आप सुन रहे आकाशवाणी एडिलेड को 103.1 एफएम भारतीय प्रसारण का हिंदी कार्यक्रम मेरे यानी विनोद बिस्क के साथ। इस कार्यक्रम को आप ऑनलाइन भी सुन पा रहे हैं www.5bbi.com.au पर।